0: सीपी ग्राम्स सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम,
1: ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है
0: और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीपी ग्राम्स, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉगिन करें सीपी ग्राम्स।
2: మొదలు పెడదామా ఇన్వెస్టింగ్ పాఠాన్ని?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे।

0: प्राप्यते। पारंपरिक हिंदू मान्यतानुसारम अयं दिवसः पूर्वजेभ्यः श्रद्धांजलि समर्पणाय समर्पितानां पितृपक्षाणां परिसमाप्तेः अथ च देवी पक्षाणां मंगलमय प्रारंभस्य परिचायकः वर्तते। अस्माकं कोलकाता वार्ताहरः सूचयति यत् महालय पर्व आकाशवाण्याः कालजयी ध्वनि कार्यक्रमेण महिषासुर मर्दिनी इत्यनेन सह अभिन्नतया सम्बद्धमस्ति, यस्य प्रसारणं प्रत्यूषे क्रियते। वीरेन्द्र कृष्ण भद्रस्य विशिष्ट वाचनेन संस्कृत मंत्र घोषैः अथ च भक्ति गीतैः सज्जितः अयं कार्यक्रमः वंशेभ्यः बंगाल संस्कृतेः अविभाज्यम् अंगं वर्तते। भगवत्याः दुर्गायाः आवाहनेन संपूर्ण परिवेशः भक्त्या उत्कंठया अथ उत्सवीयोल्लासेन परिपूर्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महालय पर्वणः शुभावसरे देशवासिभ्यः शुभाशयान् प्रकटितवान्। सामाजिक पटलीय संदेशे प्रधानमन्त्रिणा कामना कृता यत् भगवत्याः दुर्गायाः मंगलमयः आशीर्वादः समाजे सुखं करुणां नवाशां च संचारयेत्, सः सर्वत्र शान्तेः समृद्धेः च साम्राज्यं प्रवर्धेत इति प्रार्थितवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ता।
0: भारतीय जनता पार्टी इति दलेन अद्य प्रतिपादितं यत् सद्यः सम्पन्न उपनिर्वाचनेषु दलस्य विजयेन इदं स्पष्टीभवति यत् देशे अराजकतां प्रसारयितुम् इच्छतां तत्त्वानां प्रयासाः लोकतन्त्रेण निरस्तीकृताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपा सांसदः वरिष्ठ नेता च रविशंकर प्रसादः अवोचत् यत् भारतीय जनता दलं शान्तिपूर्ण प्रतिषेधस्य विरोधी नास्ति, किन्तु विपक्षिदलानि स्वकीयां निर्वाचन पराजयं परिहर्तुं मार्गेषु विरोध प्रदर्शनस्य आश्रयं गृह्णन्ति। सः विपक्षिदलानामुपरि आरोपं कृतवान् यत् ते स्वप्रतिषेधेन विगत त्रिचतुर्दिनेभ्यः दिल्लीवासिनां कृते महतः क्लेशान् उत्पादयन्ति। भाजपा नेत्राग्रे स्पष्टीकृतं यत् देशः लोकतान्त्रिक मर्यादया संसदि निर्वाचित प्रतिनिधिभिः अथ च उत्तरदायित्वभावेन एव संचाल्यते। सः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गांधिनम् अभिलक्ष्य आरोपम् अकरोत् यत् तेन संवैधानिक संस्थानां गरिमा कलंकिता अवमानिता च।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: संयुक्त राष्ट्र संघे भारतेन जम्मू कश्मीर विषये मिथ्या प्रचाराय असत्य कथनानां च कृते पाकिस्तानस्य तीव्रा भर्त्सना कृता। भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अयं केन्द्र शासित प्रदेशः भारतस्य अभिन्नं अपृथक्करणीयं अंगमस्ति, सदैव स्थास्यति च। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः चतुर्थ समितौ उपनिवेशवाद उन्मूलन इति विषये आयोजितायां चर्चायां भारतेन प्रत्युत्तर अधिकारस्य प्रयोगः कृतः। तत्र संसद सदस्या महिमा कुमारी मेवाड़ महोदया पाकिस्तान प्रतिनिधेः वक्तव्यस्य प्रत्युत्तरं दत्तवती। न्यूयॉर्क स्थितेन संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी मिशन इत्यनेन एक्स इति सामाजिक पटले सूचितं यत् संसद सदस्यया महिमा कुमारी मेवाड़ महोदयया जम्मू कश्मीर सम्बद्ध मिथ्यापवादानां प्रसाराय संयुक्त राष्ट्र मञ्चस्य दुरुपयोगाय च पाकिस्तानस्य तीव्र निन्दा कृता। आकाशवाणी रायपुरस्य उपनिदेशकः विकल्प शुक्लः तीव्र हृदयाघातेन अद्य अपराह्णे दिवंगतः। भारत ऋतु विभागेनाद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेशेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति इति वार्ताः।

0: राग बहुदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूपारतीय, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय पुरंदरदासा, धूपारतीय, सेट इन राग मोहन कल्याणी एंड आदिताल।

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्री गुरु गुहा, विच इज सेट इन राग उदय रविचंद्रिका एंड रूपक ताला।

0: अपनी कार्यक्रम को जारी रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी उतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ उतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र चापुताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय तथा मोरसिंह पर बालकृष्ण हसम ने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam, presented by Sunada Krishna Amai on Mridangam and Balakrishna Hosmane on Morsing. Archana Upadhyaya will now conclude her concert with Chellare Rama, a composition of Tyagaraja, which is set in Ahiri Rag and Mishra Chapu Tala.

0: अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप अर्चना उपाध्याय का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपके साथ वायलिन पर साथ कर रहे थे तन्मयी उपंगड़ा तथा मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर थे बालकृष्णा होसमने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मंगलूर के स्टेशन में रिकॉर्ड कर आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ आज का अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: In tonight's national program of music, you were listening to a Carnatic vocal recital by Archana Upadhyaya. She was accompanied on the violin by Tanmayi Uppangala and on the mridangam Sunada Krishna Amai and Balakrishna Hosmane on Morsing. This concert was recorded earlier at the studios of Akashwani Mangaluru and broadcast from Akashwani Delhi. Please stand.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई